0: येन वाचाय वचेरसेकमपगतमयायां भूतोपतिलण्ठमस्यतां कालान्तरे संवरितुमबुधे
1: अन्नमय्यां धर्मानुसतिनय्यां करोमसे।